0: अहिले बिहानको 6 बज्यो।
1: यस टाइम चेकका प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: Wake, wake, wake up.

191 सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आईबीएम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दी ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले बिहानको 8 बज्यो।
1: यस टाइम चेकका प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: वेट वेट वेट

0: म्युजिक म्युजिक म्युजिक
1: अनि
2: सेमी टु प्ले म्युजिक
3: या अफ कोर्स सेमी टु नॉन स्टॉप प्ले म्युजिक ओन्ली ऑन
4: नंबर 1
3: अमृत एफएम To play music. All you are, Amurta FM.

0: अहिले बिहानको 10 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: Wait, wait, wait.

1991 बाट सम्मानित बजरंग स्टील को ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले अपरान्नको 4 बज्यो।
1: यस टाइम चेकका प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
3: ब्रेक ब्रेक ब्रेक टाइम।

0: अहिले साँझको 5 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: Wait, wait, wait, wait.

0: अहिले साँझको 6 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: ब्रेक ब्रेक ब्रेक टाइम।

191 सम्मानित बजरंग स्टील को TNT सर्ट आईबीएम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: संजना,
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां, हाँ इसी का नाम।